0: ऑपरेशन ले भी बातों नहीं बातों बातों नहीं पर वैसे बुनू बातों नहीं बातों बातों नहीं गर्ल आपको पीपु में बातों नहीं बातों बातों नहीं फ्रॉम टू डू बुतनों का बातों नहीं बातों बातों नहीं
1: नियमा Raise your feet.
2: This one says, happy birthday to my father, Dan and Olio. Coming from his one and only son, Young Breast Production.
1: For election, no cabal di qua. Usa del, usa len. Next, Matila Shin from Pumwejus. Yo, Moto. What's up, Jean-Paul? Is there any information in the building? Talking to the ladies. Hey.